जोड़ी पाकिस्तान के मोहम्मद खान और कौलशूम खान को जोड़ी लाई 3-0 को सोलह सेट में ब्रांच गए। रवीना दीवाना जोड़ी ने पहले सेट 11-6 दूसरों सेट 11-8 और तीसरों सेट 11-4 ने अपने पक्ष में उतारे और जीतने यह जोड़ी दूसरो चरण में प्रवेश कर चीन ने जापान 3-0 को सोलह सेट में पराजित करके एशियाई खेलकूद महिला वॉलीबल में स्वर्ण पदक जीते। हिजो बनाकर फाइनल में चीन ने पहले सेट 25-19 ले

先生，这个我的工作，他带着我把我们打的时候，他对我们三个弟兄弟夫，我有个邻居他妈老弄外姑，我们弟夫就正好把技术给你，然后干上说明一个妈妈领导，我们邻居他妈他带着看他看着他们最怕他妈他妈的，他背了我，背了我身体家里的弟兄弟夫穿的，因为毕竟是最怕他们的。आइए प्रोजेक्ट पार्टी का भाव समुदाय और स्कूल भी बनी आपको कुछ अपने कोई सांची कोडी लगे का सबसे सबसे ना तीनों ने जिला का सुरु कुछ नहीं पुसा रहा हमारा कुछ जिला को हमारा आइए सबको से एक आना जाना कुछ पार्टी का आप भी कुछ नहीं पुसा रहे पुसा तो यह ना चली रहे पुसा

0: तो तुम भी अच्छा तुम
1: सरकारी में जाकर खेत हुए ये ज्ञान सीखे तो
0: ले तो मैं

0: ahora te está dando un par de
1: अब हम बनेगा रखो।
2: माया मित्रता शरीर समुद्र

ser com somebody de mas a tal mai depende totally. Sambatte pani parna hua ki mati visena koi hai tha pari ka jo tumhara madan jarati sarkar ke prati ko avastha mein samhari ki tha nirantar dikhai dikhai ko sarva sarva kan kan agan tamu purva suchana object ke mata aina suka se prapara sam desk ten thawa ara pani parna sambhavna ra ko se विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकारी का तैयारी स्वरूप पर सूचना प्रणाली का शीर्ष बनाए जिला को राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण प्राधिकरण का कार्यकारी प्रमुख धर्मराज चतुर्वेदी के अनुसार चतुर्थ मौसम विज्ञान विभाग उभय पूर्वानुमान महाशाखा से निरंतर समय एक जल सतह और जोखिम अवस्था रियल टाइम निगरानी का जिला संभावित वैज्ञानिक तरह का तह में कब होगी वो उन्हीं में से कसिन प्रभाव पारे की प्राविधिक विश्लेषण कर हरित घंटा सूचना अत्यावृत्ति करना महाचार्य द्वारा समुद्र को बना बना आदि साइक्लोन प्रणाली वाकर दिशा परिवर्तन को संभावना आलोक प्राधिकरण पक्ष से निगरानी करते रहेगा मौसम प्रणाली की प्रगति में चार चिन्ह हमला को से उच्च हिमालय क्षेत्र में भारी हिमपात की संभावना मद्देनजर करते रेड अलर्ट जारी कर दिया मध्य पहाड़ी और तर्वतटीय क्षेत्र में मध्यम से ढेर भारी पानी पड़ना प्रक्षेपण कर दिया उसे पूरी तरह ध्यान में रहेगा छोटी मोटा हिमालय तथा पहाड़ी क्षेत्र में अलग पर्यटक बंद तथा सुरक्षित ठाव में आए और

यस उत्पादित हमार संदेश पर दिया प्रसाद के राधा नमस्ते प्रसन्न प्रसारण प्रीतिका हमार संदेश का खरीदारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक से वास्तवी आदि संपूर्ण पर्यावरणीय कृषि प्रवर्तन संबंधी पत्ता को खर्चान लेना पांच बजे का पौड़े उपाध्याय परिवार का 50,000 रहा परिसंतु अपराध नियंत्रण तथा संरक्षण व संचार माध्यम का भूमिका प्रभावकारी बनाए पड़ना जोड़ नेपाल गजमा हवाई फायर 5,303 ग्राम 103

सक्ती व्यवस्थाहरू राधाकृष्ण ठाकुर जनसेवा केन्द्रका सेवक युवा संचारका संयोजक इन्द्रकुमारी चौधरी, सदस्य शान्ति चौधरी, रूपा थापा मगर लगायतका सहभागिता रहन पूजा थापा मगरका लगायतको सहभागिता रहन कार्यक्रम संस्था गठनतर्क महिला कृषि समूहका कारवास्करी नगरपालिका सम्पूर्ण बन्दौरी विलम्बित वास्करी नगरपालिका सरसटरिया तथा वडा नम्बर नौ शान्ति नगरको महिला कृषि समूहका तीसजना पदाधि सदस्य सहभागिता रहन रसुवाको भटेपछि लेटा मैले विनाशकारी भैयामा पर्ख बेपट्टा खतियान गौरक बास्ती नगरपालिका आठ लक्ष्मणका पौडेल उपाध्याय परिवार बास्करी नगरपालिका वडा नम्बर आठ 50,000 रुपियाँ लहाड उपलब्ध गरेर भैयामा पर्ख बास्करी नगरपालिका आठ लक्ष्मण निवासी उपाध्याय पौडेल कुमारबाट पौडेल उपाध्याय लक्ष्मी उपाध्यायका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर सोमनाथ पौडेल उपाध्याय पटेल तारा उपाध्याय तथा नत्या शिवान सोनथिया ती

0: estat fronterí, però ara tot sí, una altra de sempre, Hispània i Puig de Divins, com ara també de cara, Hispània de les 10.4, vull dir que ho passi final de...
1: निजन तो अपराध नियंत्रण तथा संरक्षण में संचार माध्यम का भूमिका प्रभावकारी निजामा जोड़ दी जिला राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष एनटीएनसी का अगुवाई में बर्दिया का ठाकुर द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय संचार कर्मी का लाभ परिचन अपराध नियंत्रण संबंधी संचेतना कार्यक्रम में परिचन के संबंधी समाचार संप्रेषण अगत्य संरक्षण अपराध नियंत्रण हो जनचेतना का अभिवृत्ति में प्राथमिकता राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष पर्दिया को प्रमुख संरक्षण अधिकारी अजित तुम्बराम एक पांचक समय पर्दिया में बोकवा का संख्या कोष फेरबदल राष्ट्रीय गणना बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज में बोक्वा का संख्या 125 पुगे यद्यपि पाचक तथ्यांक अनुसार बर्दिया में बोक्वा का संख्या कुछ घटकर 112 में छह सौ बोक्वा का संख्या बहत्तर बढ़ी छ
2: Gracias.

व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में भी कुछ कुरा चाहिए, अपने काम सरकारी वाले प्यारी साइकिल मशीन

0: खाए, व्यायाम शब्द करी धूमपान मदिरा मसे नरी रखन अन्त्यम करी आज निग्रहता जीवन चाह निसर्गको सेवाले स्वस्थ जीवन अपनाई
1: रेडियो प्रभावका सबै पूजालाई शान्ति

0: जैसे स्थापन का व्यावसायिक तरीका नहीं होता वो खेल के संपर्क व्यवस्था उपचार केंद्र में जाए
1: विश्वास लग्न और सही जानकारी पाएगा को लघु उपचार केन्द्र आधिकारिक नेपाल .org मा जाकर आवश्यक जानकारी लिन सक्नुहुन्छ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै डिपी कोर्डामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदलीय अनुसन्धान केन्द्र सम्बद्ध सहकार्यमा डाक्टर इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटका साथ चाहिँ विश्व अर्का रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत